अकाल पुरख से यदि अरदास करें मंगदे पीएम शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर ये दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते ये महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे से है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म तो फल भी दर्शा जी असं कलयुगी जीवां दे वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं देह शिवावर मोहे से है ते ये भी कहते हैं कि कलयुग दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव है सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत में भेद महादेव नु लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहते भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख उस अकाल पुरख दे के कलगीधर दशमेश पिता जी ने अरदास की ते ए वर मंगिया दे शिवा वर मुड़े के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थों नाल प्यार नहीं किया अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸੁਣਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਆਓ ਜੋ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

0: salsın dedi. Tanıdığı ben sasıkta parça dedi. Abi o şey rahmet bir verdi. Gurur hamda sıkta parça dedi. Tanıdığı da hayrar. Nat naran hala çoğda. Apne tor se bada okhar aaya par tade gurmukhan di kripa naal inspiration naal ga ho jayega aur naal hi naal tute vis sukhi honi hai do din to hukm karde rahe pe tumhare gauni hai tumhare gauni hai main keh do cheezan ikatthiyan ho rahi hain raag bhi okha hai taal bhi okhi hai to khair main samjhta ha ke raja sahab ki mahapurush naam kam wale और तमिलनाडु सत्य पाशा की रामत है जिस तरह दास कमे एक बड़ी प्रसन्नता की बात हुई है कि ये दीवान तकरीबन हफ्ता या अठ दिन ही चलता हों रौनक भी बड़िया बन दया सन पर राजा साहब की अपनी रामत बरसती देखो कि यह रोज रोज बढ़ता जा रहा है नौ दिन तो यह हो जाना जब तक संपूर्णता होनी सतगुरु के दरों पर बरसाए सारे महापुरुष और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह आप असीसा बख्शे रामता करे ताकि शब्द किस तरह गाया जा सके पर पेशतर मैं सारे तरफ खेचल दिता हाँ कि एक बार बुलंद आवाजी न फतेह की जाओ जी भरपूर तौर पर उचारो वाहेगुरु जी का
1: वाहेगुरु जी की फतेह
0: पर वीर तो पिछे पिछे संगत भी मेरी इदा बेनती है सत्संग में जी सारे उच्चारण करो वाहेगुरु जी का खालसा नट नारायण तुम्हार अंदर जी।

कुकुर के लोग बसेंगे तेई रेणी रे सोई तिरमीरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरह

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडिया बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। ते जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिरे महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमां विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों श्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों। नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने, इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना। साहिबां च कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तां हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, इह किवें हो सकदा? कोई एक अवस्था है, कोई उहनूं अनहद नाद दी गल करदा, कोई उसनूं इलाही नाद दी गल कह के करदा, कोई किसे ढंग नाल दसदा। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरू हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त की आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। इन्ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इहदी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहलां आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे हुंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरिया बच्चिया वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कईआं बच्चिया दे अंदर शौक पैदा करता जांदा है। पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, उह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे नहीं वेखेगा, उहनूं इक वारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाउणा पैंदा, उत्थे जा के बहिंदा, इक तां जकड़ के बहिणा बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाते ने उसकी समझ तो बाहर आता है, वो पहला पहला बड़े परेशान होता है, पहला पहला उसनू कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर है वो बोझ जापते। लेकिन चार दिन बाद वो जिहड़ा बोझ है वो ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते। उन्हें अक्षर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना रहे उसकी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धति की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापता है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भुख पवे जान छुटे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह उह बेनती कीती है ਵੀ ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਿਆਂ ਬੱਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਵਰੇ ਬੋਝ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਰੋਂਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋ ਕੁਸ਼ਰਮੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਸੀਟ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ

मौसम ओ घड़ियां ओ पल ओ समा सफल है जदों चित आवे श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास आके ब्राह्मणा ने बेनती की, महाराज जिस तरह शास्त्रां विच शुभ अशुभ दिन गिने जाते हैं आप दे मत विच भी हैं, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने भई साडे मत विच तां ओ मौसम ओ समा ओ दिन ओ घड़ियां ओ पल सफल हैं जदों परमेश्वर दा नाम चेते आ जावे। पले दिवस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ वेला को हों बल जाऊं जित मेरा मन जपे हरि नाम।

ओ कदम सुहावने हन, जो कदम सतसंगत वाले जांदे हन, जो कदम परोपकार ले किसी दी सेवा ले किसी दे भले ले उठदे।